जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस।

तू मेरो प्यारो ता कैसी भुखा तू मन बसे लगे न दुखा सच्ची पाशा कृपा कर अज पादू ना मेरा आरंभ होया सबना दे करां दे विच बजिया दे सतगुरु जी मेरा प्रिया बख्शिशा प्रिया हाथ रखण जी आओ हुण समा है कथा दा सत्कार योग वीर भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी तिना पर सरवण करदे आ जी अपनियां फुल्लां दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कितै न आवै काम, जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नाहन मिलियै साजनै, कत पाइयै विश्राम। जित घर हर कंत न प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। श्रब सिंगार तंबोल रस,

विनंतीय कर कृपा दीजे नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निःचल धाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निःचल धाम। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ।

चित दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड़ खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़े तन कपे

गुर रखन वाला हेत वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो जो गुरु कृपा सदका संध्या दे दीवाना दी हाजरी श्रद्धा भावना सहित पर रहे हो। अज विशेष करके जो नवे महीने की प्रारंभता हुई है भादरों का महीना, उस महीने विच सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की उपदेश करते हैं, उस उपदेश नू सर्वन करन वास्ते गुरु बख्शिश गुरु खुशी प्राप्त करन वास्ते आप संगती रूप विच जुड़ बैठे हो। प्यार सहित आप जीआं ने अमृत बाणी दा कीर्तन भाई हरप्रीत सिंह दे दथे पाथों सर्वन कीता है। आओ समा होया है पावन विचार दा, भावां कि आपां संध्या दे दीवाना विच लड़ीवार मलार की वार दी कथा कर रहे हां, पर अज भादो महीने दी प्रारंभता करके आपां गुरु पंचम पातशाह जी दे पावन पवित्र श्री मुख तो उचारण बारह माह विचों भादों दे महीने दा पाठ सरवण कीता है ते इस महीने राही आपां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी की बख्शिश करदे हन। ये गुरदेव जी की कृपा लैण वास्ते एकत्र होए हां। सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर दो तीन मोटियां जिहां गल्लां कहियां हन जिन्हां नूं पहलां अपने जिहन विच बिठा लईए तां जो विचार समझ आ जाए। एक तां इह है कि इह जीव आत्मा इस दा सच्चा पति सच्चा कंत ओह अकाल पुरख वाहिगुरु है, पर किसे भरम विच पै के जीव ने उस नूं भुला दिता है। ते जिदे भरम विच जीव आत्मा पई है कि जिदे करके भुलाया है उन्हां दे विचों कोई इसदा नहीं बनदा। जदों समा अखीरला आउंदा है जदों समा उखियाई दा आउंदा है गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे वी जिस भरम विच जीव भुलिया पिया सी ना वी आ मेरा है आ मेरा है, वह सारा कुछ ही आहिस्ता आहिस्ता इसदा साथ छड जांदा है। जेड़ा असल इसका सी उसनू इन्ने भुला दिता ते फिर अखीर चोटां पैंदियां ने दुख लगता है। तो गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे फिर नजात किवें मिले इस दुख तो इस पीड़ा तो इस संकट तो बंदा किवें उभरे, ते दूजा यह भरम किवें नाश होवे भी जो साडा है वह सानू सच प्रतीत होवे। तो गुरु साहब ने कहा उहदे लई गुरु चरणा विच आउणा पएगा गुरु शरण प्राप्त करनी पएगी। गुरु शब्द ही है जो ज्ञान देगा ते इह शरीर कर्मां दा खेत है, इह शरीर इक खेती है जमीन है, इत्थे जिवें दा असीं बीजांगे उहो जिहा सानूं वढना पएगा। जे भरम बीजांगे दुख बीजांगे ते दुख ही वढने पैणगे, जे सुख बीजांगे सच बीजांगे ते सच ही साडी फसल होएगा। यह गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने इस पावन भादो के महीने विच उपदेश दिता है कि भरम तो मुक्ति किवें होवे, सच्चे कंत नाल किवें जुड़िया जाए ते गुरु की प्राप्ति किवें होए। गुरु कृपा करे आपां वाचन का यतन करांगे। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला रसना पवित्र करो। प्यार सहित आखो जी

बनी ना आवे। कांखी एक दरस तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साधक संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला। से सिमरा है जिन आप सिमराए, नानक ताकै लागो उपाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किश सूझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से धनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बस है हर नेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रभ माया, नानक तिन जन सरणी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन भय सिद जति दाते, हर सिमरन नीच चहकुंट जाते। हर सिमरन तहरी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घाट घाट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक की प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सोत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जय महापयान दूत जम दलै, तय केवल नाम संग तेरा चलै। जह मुश्कल होवै अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंध ना परै, हर का नाम जपत निसुतरै। अनिक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जेहे मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा प्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कूट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही। अनेक विघन जय आए संगारै, हर का नाम तत्काल उधारै।
अनक जोन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कूट पाप खोवै। ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइये साधकै संग। जेह मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जेह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महा पयान तापत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हरि नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मान तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बबेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब पर न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग केते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्ख सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरि, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पूर्ण दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वरत नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै चेर जीवै, महा उदास तपी सर थीवै। अग्न माहे होमत परान, कनक अशव हैवर भूम दान। नियोली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावै, ताउ पी होमै मैल न जावै। हर के नाम सम सर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देहे छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते होटै। सोच करै दिन सो अर रात, मन की मैल ना तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाण बजम का प्यो पहो व्यापै, अनक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भीख अनेक अगन नहीं बुझै, कूट उपाव दरगै नहीं सिजै। छूट सनाही ऊभ पयाल, मुहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपु ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै। जिस जन कौ प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सू गनिए सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन आपो ने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सृष्ट साजना।
सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कहो धन तेरू नाउ, निथावे कहो नाउ तेरा थाउ, निमाने कहो प्रभ तेरू मान, सगल घटा कहो देवउ दान। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी, अपने गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर न जान सकोय। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जास सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जिहे घट वसै हर नाम सलोक। निर्गुनियार एन्या सो प्रभ सदा सम्माल, जिन किया ते सचीत राखो, नानक निबही नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन मैं जिने उबारिया। बार बविस्था तुझे प्यारै दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख्य प्याओ बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लेहु तौ नानक सीजै। जे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत प्रात मीत बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जे प्रसाद भूकै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना। ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ लेहु प्रभ आपे। आद अंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करै गवार। जाकी सेवा नव नेद पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावै दरगै मान, तिसै बिसारै मुगद अजान। सदा सदा ए भूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै तोए, गर तब प्रीत भस्म संग होए। अंध कूप मैं पतत बिकराल, नानक काढ लेहु प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करै दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, शपश नाहे कश करै छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे तरै अथा। जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गै लिहो ऊड़ निभावै। कहा बुझारत बुझै डोरा, निस कहिया तौ समझै पूरा। कहा बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो ऊहाऊ सगवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मनै मनै प्रतीत, काल ना आवै मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बिकार महा लोभ त्रोह। याहु जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहु आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी, तुम ते होए सो आगे आकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दा सदा कुरबानी। सलोक दीन हार प्रभ छोड़कै, लागे आन सो आए। नानक कहू न सी जाई, बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक पी न दे दस पी, हैर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे।
जिस ठाकुर से उनाही चारा ताको की जय सद नम सुकारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जाने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरासु खात पीत बरताय आनंद उलास अपनी अमान कश बाहुर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै जिस की बस्त तिस आगै राखै तब की आज्ञा मन है माथै उसते चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक भांत माया के हेत सर प्रभुवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओह बिन सहउ मन पछतावै जो दिसै सो चलन हार लपट रहो तह अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेह ताकौ हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमै ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान आस थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलेत बिकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकद की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरारथ दाम धन धन ते जन जिह कट बस्यो हर नाउ नानक ताकै बल बल जाऊ रहत अवर काश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखों गांड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू भीन अवर उपदेश है आप न करै आवत जावत जन्मै मरै जिसकै अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक ऊन जन चरण पराता करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपेह मानै आपै है आप करत नवेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव स्यानप सगल ते रहत सब काश जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए थान थलंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को राख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रास भोग नानक सदा त्याईऐ त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताकू जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगै मान पावै नानक पत सेती घर जावै जिह प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै मन सासा सिमरहो प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे हे जिह प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कभू ना बिसारी
जिह प्रसाद बाग मिलख तहना राख पुरु प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साधत सहते आई तिसे ते आए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जिह प्रसाद कर है पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सा सा चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पतरा है गुर प्रसाद नानक जसका है जिह प्रसाद सुनै करन नाद जिह प्रसाद पेखै बिसमाद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परम गत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुर प्रसाद नानक मन जागौ जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मनो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कौ जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जिह प्रसाद सब की गात होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होई प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया जित जित लाव हो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक अगम अगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कह संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध

ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇਆ ਦਿਆਖਿਅਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ਸਲੋਕ। ਕੁਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨ ਭੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੂਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ। ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇਹ ਕਰਮ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਬਾਛੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਵੈ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਫਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਨ ਆਵੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਜੈ ਮੂਲ, ਸੂਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਅਸਥੂਲ। ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਚੌਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ। ਜੋ ਜੋ ਜਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ, ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ। ਸਰਬ ਰੂਪ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਕਹਿ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਦਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ, ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਦਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਰੈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ, ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹ ਨਹੀਂ ਬੇਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬੇਖ ਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨਤ ਤਰੰਗ, ਲਖੀ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਤੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਹਿ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਹੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ, ਬਹੁਵਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਹਿ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀ ਸਰੋਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਬ ਕਾਬ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ।
ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਪੇਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪ ਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਿਅਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸ ਤਾਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚੈਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਹੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨ ਮੈਂ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋ ਨੇ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈ ਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਹਨ ਤਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਾਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪਹਿ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਵੈ, ਆਪੋਨੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲ ਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਜੋਗ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਆਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸੁਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਦੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੁਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਗਹਿ ਦਿਸ ਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੇ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੇ ਬਣਤ ਆਪ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬਡਾਈ, ਸਖਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਉ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਉਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ,
कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बहे बड़ राजा, कबहू पेघारी निज का साजा, कबहू आप कीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सा चुका है। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन तहरी लावे ध्यान, कबहू तट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवे नचावे, ज्यो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। कबहू साध संगत ए पावे, उस अस्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगाश, उस अस्थान का नहीं विनाश। मान तन नामरते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। श्लोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जीवन वंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जून परमाव है, तन भूमिका जो करै गुमान, सो मूरख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आवै सुख पावे, धनवंता होए कर गर बावे, तृण समान काश संग न जावे, बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन में होए जाए पसमंत, किसे न बदाए आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटाया अभिमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हों तारे, शर्म पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आप सकाउ जो भला कहावै, तिसै भलाई निकट न आवै, सर्ब की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जन मुझते काश होए, तब इस कहो सुख नाही कोए, जब ए जन मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग नहीं चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हौ छूटै, सहस खटे लख को उठ तावै, त्रिपत न आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिख्या की करै, नह त्रिपत आवै खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुखन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़पागी किसे प्राप्त होए, करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहा बिचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, ज्यो केश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूँ कै संग, बूझा देखा करै बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरै न बिन सय आवै न जाए, नानक साध ही रहा समाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन बिसथार, सब कछ उसका ओ करने हार, उस ते भिन कहो किश होए, थान थनंतर एक है सोए, आपुने चालित तो आप करने हार, कहु तक करे रंग अपार, मन महे आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सात सात सात प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुने श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन पराय, सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पीतरै,
संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत भावै ता ओए पी गत पाहे, संत का निंदक महा तताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी कौडा न लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान भरमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावै ता लए उबार, संत का दुखी एयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुड़े केला, ज्यों बुआड़ ते लखेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साधु मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत कै दुख ना त्रष्टै कोई, जैसा भावै तैसा कोई होए, पाया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, साबक हट तिस क्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करोह दिन रात, तिसे त्यावह सास गिरास, साबक आश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बडभागी नानक जन से, सलोक तजो सियानप सुरजनौ सिमरहु हर हर राय, एक आस हर मन रखौ नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक वृति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न कृष्णा लगै आए, मारे रखै एको आप, मानुख कै किशना ही हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, ननो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर करम श्रवण हर कथा, हर दरगै नानक ऊजल मथा, बडभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करै विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एत ओत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन देन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की कासा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म के जिस मन भूख, नानक तिसे न लागै दुख, जिसको हर प्रभ मन चेत आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तात सब बूजिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चलित आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत राच थाप उथाप,
अविनाशी नाही किश खंड तहरण तार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सु सुभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पहे निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड़पागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए होवै सो होए करणे हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हूं बनम आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जने को जान सलोक सर्ब कला भार पूर प्रभ बिरथा जन नहार जाकै सिमरन उदरिय नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किश काम गात नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की ज्योत सगल घट सो है धनवंता होए क्या को गर्बै जा सब किश तिस का दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बह दातार तिस दिन हर जाने गवार जिस गुर प्रसाद तूटै हो रोग नानक सो जन सदा आरोग ज्यो मंत्र को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मनै अस थम्मन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मेल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की भाषा उतूर नानक की हर लोचा पूर मान मूरख काहे बिल लाइय पुरब लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काशो करै सोई सुख मान भूला काहे फिरै अजान कौन बस्त आई तेरै संग लपट रहे ओ रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लिहो मन मूल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद के बसंतै संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कहे सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए इहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते सारू साधु राख हर गुण गाए अमृत रस चाख ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मेरे तक कहो जीवल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाए सब केश तिस का ओ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते होलोए जा कै हृदय को होए सच करनी सच ताकि रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरत साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशो त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मै राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्संद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मन सा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र होर तिसका मंत्र न जाने होर
आनंद रूप मंगल साध जाकै सर्व थोक सुनिए घर तापै राज मै राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सुरग्रस्त मैं भोगी त्याहे त्याहे भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जन पूत सगल परोई अपुनै सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके असुफान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना बेद कीनो बिस्तार प्रभ अविनाशी एक ओंकार नाना चलित करै खिन माहे पूर रहो पूरन सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपने कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे खंड सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पाद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत असधान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाकै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपने मेथ गत जिसकी सृष्ट सो करणै हार आवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे होए दाते दुख घटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड पागी जन कै संग एक लिब लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आदि सच जुगा दे सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत तिहावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बकता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भै ते निर्भउ होए बसाना जिसते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताकौ भिन न कहना जाई बूझै बूझनहार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवकी निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जन संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तहारै नानक सो सेवक सास सास संहारै अपने जन का परदा ढाकै अपने सेवक की सर पर राखै अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात राखै ताकि गत मित कोई न लाखै प्रभ के सेवक कौ को ना पहुँचै प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया निकी किरी मैं काल राखै भस्म करै लस्कर कोट लाखै जिसका सास न काढ़त आप ताकौ राखत देकर हाथ मानस जतन करतब भांत तिसके करतब बिरथे जात मारै न राखै
अवर न कोई सर्ब जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वेडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिप ताने मान तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सद काम बोलो जस जिह का दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात कर है भगत आत्म कह चाए प्रभ अपने सिंह राहे ही समाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ बस है हजूरे कहु नानक से ही जन पूरे मन मेरे दिन की उठले मन तने अपना तीन जान दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर सियानप सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजाओ साधो पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिस कै संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिख की पकर है प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचने हर नाम उच्चरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुर सिख कौ नाम तन दे गुर का सिख वड भागी हे सतगुरु सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सुमारै गुर के ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कछु न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए नेह खामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपने कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बिस बिसवे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं काश परम सह सियाण पलै न जाइये नानक ऐसा गुरु बड भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करण आघाने मन संतोग आत्म पतियाने पूरा गुर अख्याओ जाक मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जिह बाएक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन बबेक काहू बोल न पहुचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमर है सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने इहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन मह रखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तह तिनासे तापत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चूका निरपव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका साथिन कृपा तहरी साध संग जप नाम मुरारी थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियोही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पह प्रगास साध कै संग राज रचना अपने काल तहारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक
साथ न चले बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसार हो चरण कमल रिग में उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ ए तन संच हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वह सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बच है मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुबा को करह भली करनी सा सुबा भज हर की सरनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बोध हर कह नाए दह दिस धावत अवैठाए ताको बिघन न लागे कोए जा कह रिदय बस हर सोए कल ताती ठाडा हर नाओ कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बस है अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागवन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यूं रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनुपावना छूटन हारे सिमरत सासत बेद बिचारे हर की भगत करहो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सती रह तना तू क्या लपटाव है मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो हो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया बिस्थार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम बिसार नानक पशु ताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपा वह सुनत कहत रहत गत पाव हो सारभूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बिकफैल ओहे अचिंत बसै सुख नाल सास गुरास हर नाम संभाल छाड़ सियान पसगड़ी मना साध संग पाव है सच तना हर पूंजी संच करहो व्यवहार इहा सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाओ अनंत मान तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे ओ प्रव्याप अनेक बिस्थार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मान तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाच प्रभ दान कर कृपा देवहु हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाउ साध कह संग परे सरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जनम मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरधा साब पूरी रव रहया साध संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए
सो क्यों बिसरै जे काल ना बानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काटै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तात इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन प्याया साजन संत करहु एहो काम आन त्याग जपहौ हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहौ आप जपहौ अवरह नाम जपावहौ भगत पाए करिए संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपहु गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एहि सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर माया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनेक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगाश सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर कसूग कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साखत कहो कि तठाए जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कस डरै आपन चाले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जानम मरन कहो कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानके आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तल तह शल शेदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी सोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला पे परबीन तह वेद कतेब कहा को चीन जब अपन आप उरत हरै तौ सगन आप सगन कहा विचार जह आपन ऊच आपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जह अशल अशेद अभेद समाया
ऊहा किस है व्यापत माया, आपस को आपे ही आदेश, तेह गुण का नहीं प्रवेश। जह एक का है एक, एक भगवंता, तह कौन आचिंत, किस लागे चिंता। जह अपन आप पतियारा, तह कौन कथा, कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा, नानक आपस को आपे पाहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार, तेहो गुण में कीनो बिस्तार। पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल, हमें मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोच ताओ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसर पसार संत प्रताप। दोहू पाक का आपे तनी, उनकी सुबा नुहू बनी। आपे हे कौतक करे आनंद चोज, आपे रास भोगन निर्जोग। जिस भावै तिसे आपन नाए लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथाह अगणत अतुलै, ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानक इको पसरिया, दूजा कह दृष्टारु। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार, आपे एक आप बिस्थार। जात सभावै तां सृष्ट उपाय, आपने पाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए, आपन सूत सब जगत परोए। जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सब तक हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस रख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप, अंतर जमे रहे व्याप। प्रत पालै जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करहै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जान लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक कौ सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इस दे ऊपर नहीं विचार, जाकै मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निरवैर, अन दिन पूजा है गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। साध संग मेल करहु आनंद, गुण गावहु प्रभु परमानंद। राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देखा करहु उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एक है सो आओ। आठ पहर प्रभ पे खुह नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसा बहो, मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मान तन नाम जप हो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच व्यापार करहो व्यापारी, दुर्गा निभाय केप तुम्हारी। एक काटे करखो मन माहे, नानक बहुर न आवै जाहे। तिसते दूर कहाँ को जाए, उबर रखन हार ते आए। निरपाओ जपै सगल पाओ, मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जान को कोई ना पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा। मात पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहो ते निहाल, ताके निकट न आवत काल।
अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंज

पदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेखो सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर तन के भर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चेत चेत वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल।

नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्ब इच्छा ताकी पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न हो वैयावन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए खेम सांत रिद नाव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मै ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हरे नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कूट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल सुबा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम।

नानक एह गुण नाम सुखमनी। सब ते ऊच ताकी सोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आद जप आद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहि ता इक न चलै नाल किव सुचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी

तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जी को बुझै हुए सचियार तवलै उपर किता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी जा तिरंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कला मेहो लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया किता हुए किता दान सुअल हो रूप किती दात जाने कौन कूत किता पसाओ इको कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाउ असंख पूजा असंख तप ताऊ संघ ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाकसार असंख मोह लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाही असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख मलेश मल भक खाहि असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम अगम असंख लो असंख है सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिने लिखे ति सिर नाहे जि फरमाए तिवते पाहे जिता कीता तिता नाव विण नावै नाही को थाओ कुदरत का

संताम संसात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्युत ज्युते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रेनादं विपुते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासवासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनासका अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गाह अटाह अनाथे परमाते अजोनी अमोनी नारागे नरंगे नरूपे नरेके अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय विगनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।

जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दे मुहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मूरचा निज कर दे करिय, सब बैरन कुआ सुंगरिय, पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो भर

मरण काल का त्रास निवरिय। वो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू कर हो रक्षा। राख लो महरा कनहारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दुष्कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल योगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जू थी यो। जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो। आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मुह बद कियो। कट कट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर्त तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिल देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आपा अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताका कृपाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन

है रचा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु, ताके ताप तनक में हरहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छा छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास कीता है उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारित दुष्ट

आई दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल्विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को क्षय करता। श्री आशुतोष जप है दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भौ निकड़ना तिन नर के रह, हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे। चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्ध सहस पन तीन कही जय। आद्र सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया

मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री यशपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तो हे।

तू सदा रहू हर नाले हर नाल रहू तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कर सब सुवारना सबना गलना समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहू हर नाले साची साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरी कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गुवाइया कर सां सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टव जिस दियां हे वड्याईयां कह नानक सुनहु संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंसब तिद घर सुभागै शब्द वाजे कला जित करतारिया पंचदूत दुवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित करियन हदवाजी साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजहु क्या करे विचारिया

पथ कहानी मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिने तु भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन टगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विट्टा हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया मन प्यारिया तू सदा सत संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई ऐसा कम मूले ना कीचै जितंत पछोताई है सतगुरु का उपदेश सुन तू हुवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तिरंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या कुआ कुखाने आखे ता वेखे सब तू है जिन जग तू पाया कह नान तू सदा गम तिरंत ना पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किनी सच्चा मन वसाया जी जन सब तू दुपाय वेख परसने आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नान जिसनु आप चुटा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिख मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना खनिहो तिखी वाल हुनकी एत मार्ग जाना गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यों तू चलाहे त्यों चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावहे जिस नौ कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कह नानक सच्ची साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे सुहेला सब सुहावा सब तो सुहावा सदा सुहेला सतगुरु सुनाया ओ तिन कै मन वसिया जिन ध्रुवो लिखिया आया इक फिर है कनेरे करह गल्लां गली किने न पाया कह नानक शब्द सुहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सह चुप संग सुबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए नह जाई सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए सहसै जीव मलीन है कि संयम धोता जाए मन धो शब्द लागू हर सिंह रहो चित लाए कह नानु गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा इव जाए जी हो मैले बारो निर्मल जी हो ता मैली तीन जन्म जुवे हारिया ये तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यों बेतालिया कह नान जिन सत अजिया कूड लागे तीन जन्म जुए हारिया जी हो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सत समानी जन्म रतंजनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय दिया यंतरात मैं समाले आप चढ़ सदा रह परन गुर बिन वर न जाने कोई कह नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए पावै मुक्त न हुरथै कोई पुछो भविक्या जाए अनेक जुनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिरबाणी जिन कौ नजर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाज हो होर कच्ची बाणी कहते कच्चे कच्चे कहते कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हार हर नित करह रसना कहया कछु न जानी चिचिन का हिर लिया माया बोलन पैरवाणी कह नानु सतगुरु बाजू होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ सब छेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतने आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ
शिव सकता पुपाय कह करताया पे हुकुमरताय हुकुमरताया वे कह गुरु।

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक रथ वाह जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझैता है सत जुग रथ संतोख का धर्म अगैरथ वाह रथ जतै का जत जोर अगैरथ वाह द्वापर रथ तपै का सत अगैरथ वाह कल युग रथ।

0: का गुण चंगियां तत्व सबको निवे आप कौ पर निवे न कोए तर तरह जो तो लिया निवे सुगौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हमता मिर्गा शीश निवाया क्या थी है जर दे कुछ
1: महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समादंग।

पारू मस्तक काट धरी तिस आगै तन मन आगै देउ नानक संत मिलै सच पाइयै सहज भाई जस लेउ क्या पविय सच सूचा हुए साच शब्द।

खंडित निंद्रा अल्प आहारं नानक तत्व विचारु दर्शन पेख करहु जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंता बार है अंतर एक सरेव हो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझा।

अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी खिंथा झोली।

धौ खप्पर पंच भूटोपी काया कड़ासन मन जागोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरम।

आए, कवन सोत्रे पवन रहा सुमाए, घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बाहर शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सै आवै जाए, नानक गुरमुख।

गुरमुख परचय सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचय अंतर विद जानी, गुरमुख पाये लख अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार। गुरमुख कथ कथै विचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हौ मैं जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, किसमें उपत खपत सुबाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाए, साच रत्तो पत स्यों घर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुद्धि, गुरमुख सर अपसर बिद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख

गुरमुख चुकै आवण जान, गुरमुख पावै गुरमुख दरगह पावै मान, गुरमुख खोटे करे पछाण, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख दरगह सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद न पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख हौमै

होए, नानक गुरमुख सगल भवन की सोझी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथाले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, अकथ कथाले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला, एक शब्द जित

काम क्रोध बिख अग्न निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे। कवन मुख चंद हिवै घर छाया, कवन मुख सूरज तपै तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहै।

हुई, अनहत सुन कहाते हुई, अनहत सुन रते से कैसे, जिस ते उपजे तिस ही जैसे।

सुन शब्द अपरंपर धारै, कहते मुक्त शब्द निस्तारै, गुर की दीखिया से सचराते, नानक आ

कोई न रखै, बिन शब्दै नाही पत सकै, क्यों कर बुझै पावै पार, नानक मनमुख न बुझै गवार, कुबुद मिटै।

कहां बसै सो शब्द औधू, ताको चुकै मन का पवना, नदर करे ता सतगुर मिले ता निज कर वासा।

गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन घर आसन बैसे, नाभ पवन घर आसन बैसै, गुरमुख खोजत तत लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रिभवन जोत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुभाखै, सच रपै रंग कबू न जावै। जा इहो हिरदा देह न होती, तौ मन कैठै रहता। नाभ कमल

ना होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त न कोई, बिन सतगुर भेटे नाम पाया न ना जाए, बिन सतगुर भेटे महान दुख पाए, बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार।

मिल पीवो भाई। कई बार मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए, कि आज जो बारी साडा भेक है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोलदी है, कपाट खोलदी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे हैं, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे हां। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विचों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तों अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना, और किवें करना, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टैप्स दे उत्ते चल के। नानक अमृत मने माहे, बारी रिचुअल करदिआं करदिआं कई वारी असीं मन दी खेड नूं भुल जांदे आं, पर गुरु पातशाह फरमा